0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पड़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को,

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग कर भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा।
1: अच्छा,
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
1: जी,
2: वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था।
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
1: हाँ हाँ।
2: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
1: अच्छा,
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है। फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
1: अच्छा,
2: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
1: अच्छा,
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
1: हाँ।
2: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी की बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं, मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
1: हाँ।
2: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
1: अच्छा,
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है।

0: बहुत सारी चीजें सीखी उसमें फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता. कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ.
1: अच्छा.
0: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी. आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM. और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है. और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM. ओनली

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी, वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं
0: जी,
1: लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है
0: जी,
1: कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं
0: जी।
1: तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ।
0: जी
1: बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या बात,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है
0: जी। बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुँची नहीं है
0: जी।
1: हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है
0: जी।
1: ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है
0: जी।
1: कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे, बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है
0: जी।
1: इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान।
0: वाह, यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली
0: है? हाँ।
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती हो, क्या होता है ना हम लिखते तो हैं
0: हाँ।
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ।
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे
0: हाँ।
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना। फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ।
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी।
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे।
0: अच्छा।
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ।
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ।
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ।
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी।
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा। जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साह वर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी।
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ।
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी।
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ।
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: छपी हाँ।
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ।
1: जैसे ये है
0: आखर लिखता हाँ।
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा।
1: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा।
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था।
0: अच्छा।
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना है
1: लॉ करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ।
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया
0: अच्छा।
1: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ठीक है मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ।
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ।
1: और उसमें मैं जाने लगी वन
0: अच्छा।
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ।
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो
0: अच्छा।
1: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ।
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी
0: अच्छा
1: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी आप।
0: अच्छा।
1: मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ।
0: क्या बात है
1: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ।
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ।
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ।
1: जैन मंदिर के बराबर में वो उनकी दूध
0: हाँ।
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ।
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ।
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।

0: मैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
1: जी।
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें। क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना, और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए। जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा।
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए। आरएसएस के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी। हाँ। ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए। हाँ। हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है।
0: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा।
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्या है
1: ना इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना, पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन में
0: से नहीं जाता। वो सोच कर चला जाता है
1: जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी।
1: उनका दुख दर्द देख
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है। आपको यही छोड़कर जाना होगा। यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
1: जी।
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है। पर आप पड़ जाओगे, क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी।
1: राइट।
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। हाँ। गिरे ना कहीं
1: जी।
0: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे रहते हैं। हम लोग इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा।
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था। तो जो हम लोगों को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है।
1: राइट।
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था।
1: बराबर।
0: और आके बस
1: और अब ज्यादा
0: सोते थे।
1: हाँ।
0: मतलब रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
1: कुछ
0: हाथ से
1: तो
0: कुछ
1: किया।
0: तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है।
0: ठीक जी। थैंक यू।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे,
0: आप बताओ।
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतने जिंदगी के बारे में सुनते हैं।
0: ये कर लेगी, छोटा सा है
1: जी।
0: चलेगा।
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी। इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ। जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी।
1: आज भी आई है।
0: कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा।

0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पांव पर रुक जाएगा।
1: क्या बात।
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पांव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
0: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

0: परसों बाद ही घूमने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपने कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिस वारसी। मोनिस जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज़्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिस जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिस जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का है उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते नहीं एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड़ पर या किसी और मोड़ को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए कि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बायकॉट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं। हाँ। शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते। तो जो पॉसिबल चीज है, जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है, उस चीज को आपको, ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी, लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं। तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेर व शायरी है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जानूं, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं। तो निकलते गया और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक मेरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा। एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा। तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा। जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए।
0: अगर
1: डायमेंशन शायद इश्क का ही है
0: और शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को ये मुझे मालूम है, और काशी के लिए जाना इतना काफी मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन में।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम हाँ प्रेम प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे कुछ दे ना दे इसको लोग प्यार समझते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महफूज है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रख के ये शेर लिखा था मैंने कि जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है उतना ही सेम है, उसी जगह पे वो शिफ्ट नहीं होता है यूजुअली, वो वहीं पर जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे शकील हो चाहे मानस हो उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए
1: कि किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे प्रेम को छोड़कर?
1: मैं कहूँगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए
0: जो जीत गए वो कृष्ण में जो हार गए वो मेरा,
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया, बोले तू कुछ है ही नहीं,
0: करेक्ट,
1: तितर बितर
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा बोनस कैश और बिल्कुल कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है सही,
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा को सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहाँ शायद कृष्ण मीरा के होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: क्यों नहीं होगा, हम और आप किसी ना किसी दौर में किसी ना किसी जमाने में, अभी दुनिया में इतनी नफरतें हैं, हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक में बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट
0: है,
1: तो किसी न किसी वर्ल्ड में तो किसी वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
1: अब इसके बारे में हमें
0: वो तो जब जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल
1: है। इश्क का रियल में शब्बीर भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, चलते रहता है। ये लोगों को लगेगा कि अरे ये तो महबूब की पहले तो भी तारीफ कर रहा था,
0: बुराई कर रहा है,
1: तो ये तो चलते रहेगा। ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो, कुछ अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़ के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने तू, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूं क्या रहने दूं।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़ के देखने में भी
0: तकलीफ है तुझे,
1: तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दूं, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं क्या रहने दूं।
0: वाह वाह वाह,
1: ये भी एक रेंज है।
0: वाह,
1: मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं,
0: करेक्ट,
1: आशिक कभी ऊपर भी रहेगा
0: कभी नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है।
0: करेक्ट,
1: ऐसे ऐसे अशआर आदमी लिख देता है लगेगा कि ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बना ही प्यार करता है,
1: महबूब को गाली नहीं दे सकता।
0: सही सही,
1: आशिक होगा तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। तो इसलिए मैंने मीरा से ही आप पहले कबूल कराया भी,
0: लेकिन यही एक चीज है, आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं, कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूँ, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूँ, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसको, उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्यूटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी।

0: आपको याद कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज आज का जो है, आज आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
1: जी सर, अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
0: फिर
1: कुछ
0: भी फिर भी।
1: ऐसे ही एक शायर थे, मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े, लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को दबा कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है, जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
0: जो साथ में इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला के
1: लगाता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, ये अब इसको मैं इलाबोरेट करूँ या कोई भी दुनिया का आदमी इलाबोरेट करेगा, बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
1: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना दबा कर लिया और मलाल भी नहीं,
0: मलाल भी नहीं,
1: मलाल भी नहीं है।
0: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे मतलब आज के लोग शायद दूसरे तरीके समझे, मगर मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है, मेरा मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मेरिया साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मिलने आया तो बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य एक थोड़ा फोकलोर है, हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया, तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो, तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली, कि ये मैं ईद चाह रही थी, तू कौन, मैं कौन हूँ, यूनियन का नाम इश्क है।
1: हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक सीमित
0: जाना,
1: एक हो जाना,
0: दो लोग एक। जैसे हम लोग अभी देखते विवाह, कहते ना दो रूहों का मिलन है, तो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो, चाहे हिंदू कल्चर हो, कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने की बड़ी बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में। मैंने ऐसा सुना है और मेरे एक टीचर को बताया करते थे, तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि अब खोलो, तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
1: खड़ी है।
0: किससे किससे करूं, तू ही तो है, मैं ही तो हूं। तो इस लेवल का अगर यूनियन है, जो कि मतलब अभी तो
1: इसके बारे में सोचना भी
0: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: एक टॉर्च का फोकस अगर 10 mm का है, तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक एलईडी का फोकस अगर 1 किलोमीटर तक है, तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
1: करेक्ट करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था, तो चलो

0: खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
1: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है।
0: हाँ।
1: आदमी कभी कभी मैं जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी है तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखेगा जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम मेरे कम से कम 100-200 शेर तो आधे मतलब एक एक लाइन के पड़े,
0: सिर्फ एक मिसरा लिखा है। हाँ। उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
1: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे, तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ। ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए, तो बहुत बार हुआ।
0: राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
1: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन कर पाऊंगा। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉक तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
0: हाँ, दो, तीन, छह महीने मैंने नहीं लिखा।
1: तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो हाँ, जब, मतलब, दिल से
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ
1: नाजिल
0: हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे आपने यार ये आ रही आ रही आ रही और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी।
1: हाँ,
0: फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करना।
1: हाँ,
0: लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको। हाँ, कि आप परेशानी तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ खोया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, उसकी भी एक गिजा है, तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से, जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है, तो वो पढ़ लिए, या वो लिख दिए, कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
0: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते हो किसी को,
1: तो वो होते हैं, वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई थे, यार क्या लिख दिया
1: मैंने, एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर पढ़ दूंगा। आपको मालूम है वाला शेर, मैंने आपको सुनाया भी था,
0: इरशाद।
1: कई चराग है रोशन, कई चराग है
0: रोशन,
1: बस उनकी जस्तजु से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां, तेरी ही जात थी अब तक। मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार मेरा पेन नेम है सर, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाया उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से।
0: हाँ, यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है,
1: बह रही है,
0: लेकिन सब हाथ दूर है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते
1: हैं। नदी की धारा देख रहा
0: हूँ। हाँ बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं आप जब ये शेर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे चीजें बता रहे थे तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए लेकिन मैं हूँ मैं बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ
1: कोई तो है कि नदी सोचती है कि कोई तो है
0: मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है लोग पानी पी रहे हैं अगर पीने से इन लोग इतने खुश है तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए सब लोग ने इश्क बटाया आपके महबूब में, आपके महबूब में सबको इश्क बांटा उसके पास तो इतना इश्क है उसने सबको बांटा फिर भी कम नहीं पड़ा मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर
0: रहा हूँ।
1: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है कभी कभी गम भी होता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि मुझे डिस्टर्ब मुझे बात करनी चाहिए थी मुझे जाना चाहिए था मगर
0: लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या
1: करूं
0: बस बस एक बार वो देख ले उसमें खुश है बस उसमें ही खुश है।
1: जैसे मैंने इस पे भी शेर लिखा था निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार जब से देखी हमने होश में
0: हाँ हाँ वाह वाह वाह
1: जब से देखा है हमने होश में आया
0: मैंने भी एक शेर लिखा था मैं ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है
1: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में
0: हाँ तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर मैं बोला हाँ वो मोमेंट था मेरे लिए कि आ हा हा क्या क्या हो गया मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे है ना
1: बिल्कुल
0: है ना तो वही तो आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीज है कि आपने लिखा रात में उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को और मतलब सिर्फ तारीफे लूटनी है और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
1: ऐसा होता है जरूर
0: हाँ
1: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी है जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से उसकी फीलिंग से उसके इमोशन से वो चेंज होते हैं अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: क्योंकि इश्क जो है हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है नहीं इश्क फ्रीडम देता है इश्क अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे एक दूसरे को टोके एक दूसरे को ये करे नहीं इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन ही है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया नहीं वो पुराना नहीं वो किसी बंदे की जो बहुत ही प्यारा है आज भी जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
0: हाँ, है ना करेक्ट करेक्ट
1: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा
0: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
1: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है इश्क का दरवाजा एक ही उसको सब वहां से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेर लिखा निर्वाणा से पहले फिर एक किलोमीटर बचा वहां पे आपने कुछ शेर लिखा फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेर लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेर आपने लिखा था पहले वो खराब
0: है नहीं करेक्ट
1: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को
0: यही दुनिया को यही तो टटोलना है कि दीवार के उस पार क्या है
1: वो दरवाजे पार हो जाए इश्क का दरवाजा पार हो जाए
0: तो यही इश्क और शेर व शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब. बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो.
1: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक एक किस्सा याद आता है उनका कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें जात और बिरादरी वाली तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपने पास पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से कहूँगा कि समझ लीजिए
0: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब.
1: इनायत शाह कादरी साहब उनके जो गुरु जी थे और बुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी तो वो थे. तो एक दिन खाना खा रहे तो बुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या भी सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था उसके पास क्या रखा है. तो बुल्ले शाह की के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है सब अपना ही तो है. तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था जो उनका सेक्रीफाइस था जो जो भी था उनका जो जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया. अब वो परेशान हो गए तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरु जी की गलियों से निकलते थे सब चीज करते थे. यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहाँ से उनके गुरु जी कभी कदार निकलते थे तो वहाँ पे कोठे में चले गए वो. तो वहाँ पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा. तो बोले पागल पागल कैसे ऐसा आप नाचेंगे आप मतलब इतने बड़े मौलवी आप आलिम है मौलाना आप नाचेंगे. बोले नहीं आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा तो मैं नाचूंगा. पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं. इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे जो गुस्ल खाना होता है जो वॉशरूम होता है आज आज आज जो जहाँ पे आदमी
0: नहाता
1: है तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना पाइप वाइप का तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए तो पानी वॉशरूम में भरने लगा. तो उनके गुरुजी बांस लिए बांबू और बांबू से पाइप को साफ करने लगे तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से पूरा सब फट गया उनका. जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक ही है और कोई तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला ये तो तू है. तब उन्होंने उनको गले ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वक्फा कुछ सालों परेशान रहे बहुत ज्यादा परेशान रहे मनाने के लिए. मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो दो वाक्य
0: हाँ वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर फोड़ दिए खुद का क्या क्या नहीं किया.
1: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ. वो तो चाहते थे कि मैं मुझे मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं. बुल्ले शाह भी चाहते थे मैं किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में.
0: क्या
1: इस तरह की
0: क्या समर्पण होगा मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था. धनुर्धर कोई नहीं था लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई.
1: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में
0: हाँ
1: राधा कृष्ण मीरा कृष्ण सब कितने सारे लोग हैं. लक्ष्मण का राम के प्रति
0: प्रेम समर्पण था जो प्रेम था
1: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं. कुछ कुछ किस लेवल पे है कुछ किसी लेवल पे है कुछ किसी लेवल पे है.
0: हाँ मतलब चीजें इतनी सारी है लेकिन मेन मसला मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें इन चीजों का अभाव हो गया. ये चीजें मिल नहीं रही है. ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल जिसे आप चले गए आपने पढ़ लिया आपको समझ में आ गया लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते. आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने अपने रूट्स को पढ़े अपने रूट्स को जाने तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई हमने जाना मीरा का समर्पण बुल्ले शाह साहब का समर्पण सबका समर्पण आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया उस वक्त दिल में जो एक तीस पैदा होती है जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
1: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए, मैंने पैर छुए, और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी ये सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है या कर रहा है या कर रहे हैं जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है चक्कर लगाने के लिए, हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम कि ऐ इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
0: मतलब
1: अपना मेरा ध्यान कहीं और, तो ये पैर छूने वाली बात है। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल कर दिया आपने कुछ लिखा,
0: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
1: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा,
0: हाँ तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
1: इसका धुन कैसे गाने का, मैं भूल गया।
0: आपकी नजरों ने समझा
1: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ बहुत मतलब
0: वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आपको गुनगुनाना
1: तो बीच की हैं कुछ लाइनें, जैसे

0: तेरा मैं तेरा हूँ।
1: क्या मतलब, देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना पीना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि

0: बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं।
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है, ये
0: ब्लॉक नहीं,
1: इसके अलावा बात है, मैं समझ गया आप क्या कुछ नहीं, उसके अलावा की बात ही कर रहे हैं। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्बीर भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं कर रहा ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है। मतलब कई कई सारी चीजें, नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती है, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती है और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ ये, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
0: दो नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना।
0: हाँ, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द।
0: नहीं लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
1: बिल्कुल,
0: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है,
1: सही।
0: फिर उससे प्यार हो गया यानी वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से?
1: एक शायर की नजर जैसे, मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है, मुझे उतना नहीं है चलो, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
0: का भी भला हो असरार,
1: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
0: वाह वाह,
1: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में। बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर लें मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
0: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
1: कभी गुस्सा तो
0: वही मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे हैं,
1: बहुत बहुत अच्छी तरीके से।
0: वाह वाह
1: बस वही है।
0: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको और पूरी रात बैठ के शायरी सुना, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको, दिल्ली में एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहां पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कपकपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में, ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है? हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायर उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा?
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता, और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
0: ओके,
1: वही हमको मिला दिया था ना, जब वहां पे दो आत्माएं थी वहीं मिल लेते, क्या दिक्कत थी, मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचाइए, मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया। गया मर गया, तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है इश्क। जैसे इश्क की कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए, तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है। और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इसी दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या है।
0: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो, मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई मोहब्बत से, दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से, मैं कहता हूँ प्यार करिए आप लोगों से, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, सब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग। जब दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
0: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है, वो यूनियन का ही एक समझ लीजिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करेगी वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक, मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, शिक्षा मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही जरूर। वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिला है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम अगर, मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
0: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात है।
1: तो यही जवाब है मेरा। और
0: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते
1: यार? लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। तो मेरे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
0: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना,
1: इश्क करता तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता, और कुछ नहीं करता, मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
0: अच्छा,
1: और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
0: इश्क करें, प्यार करें। इसका मतलब यह नहीं जाके बोला, जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything.
0: Yeah, than anything gets bent towards humanity. Just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive. आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं ये बताता हूँ कि जब जो हम जो भी हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शब्बीर भाई। आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी वो खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है ही नहीं।
0: वाह,
1: बहुत खूबसूरत।
0: इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का, कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसकी स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जाम्पल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी much lovable, that your love should get spread in entire world, it should not get bounded. ये bound नहीं रहना चाहिए, या आप इसको close form में ना रखें. If you have something to give, please give it back. आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा form में बन के आपके पास ही लौटेगा. लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है. जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते.
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें, प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे. ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है जनाब,
0: ठहरा हुआ पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष. तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं. मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को. मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा. टाटा बाय बाय.

ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस लोग? भाई सब चंगा है ना? जनाब सब ठीक होना ही चाहिए क्योंकि आचार्य 90 FM के ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखना हमें आता है। अर्ज किया है आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, उनको देखकर दिल झूमने लगा और सबके मन खिलखिलाने लगे। आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए है बेहद खास। स्वाद का जायका निभाने की मेरे मन में आस, हमारे शो पर बनती है अनोखी सी रेसिपी, मतलब टेस्टी खाने की जायकेदार लीगसी। आ गई मैं वापस निभाने अपना वादा, यम्मी फूड को शेयर करना यही मेरा इरादा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास रेसिपी, जो बनाने के लिए हमें चाहिए आम। भाई आम का मौसम चल रहा है तो मैंगो मूड सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अमृत जैसी टेस्ट वाला आम इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी जिसका नाम है आंब्याची अमृत फळे। महाराष्ट्रीयन लोगों को वरण फळे मीन्स दाल ढोकली तो पता ही होगा। मसालेदार दाल में आटे के पतले टुकड़े डालकर हम वरण फळे बनाते हैं, लेकिन आंब्याची अमृत फळे ये लजीज खाना बिना ग्रेवी वाला है। इसे खुशबूदार आंबा मोहर चावल के साथ पकाकर किसी शेप में काटा जाता है। आप आंबा मोहर चावल को जानते हैं ना? आंबा मोहर चावल महाराष्ट्र का पारंपरिक और छोटे दाने वाला चावल है। इसे पकाते वक्त हर तरफ इसकी खुशबू छा जाती है। पूरी तरह से पकने पर इस आंबा मोहर चावल से आम्र कुसुम मीन्स आम के फूलों से खुशबू आती है, यानी कि आम्र मोहर की खुशबू। इसीलिए इस चावल को आंबा मोहर चावल के नाम से जाना जाता है। इसे ज्यादातर पुणे के आसपास वाले इलाके में उगाया जाता है। वैसे बासमती चावल भी काफी खुशबूदार होता है। बासमती चावल का दाना आकार में बड़ा होता है और आंबा मोहर चावल का दाना छोटे साइज वाला होता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी की ओर अब हम बढ़ते हैं। आंब्याची अमृत फळे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: आंबा मोहर चावल 1 कटोरी, पके हुए अल्फोंसो मीन्स हापुस आम 2, पानी 1 कटोरी, देसी घी लगभग आधा कटोरी, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 4 चम्मच, केसर के धागे 7 या 8, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, सॉल्ट पाउडर 5 चम्मच, खसखस मींस पॉपी सीड्स 1 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने ही वाली हैं। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पके हुए हापुस आम को पानी में भिगो कर रख दीजिए। लगभग 1 घंटे तक हमें इसे पानी में भिगो कर रखना है। ऐसा क्यों करना है भूल गए आप? जनाब आम की तासीर गर्म होती है, पानी में रखने से आम में से गर्मी निकल जाती है और ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बात, क्या आप सौंठ का मतलब जानते हैं? सौंठ मींस सूखा अदरक। सूखा अदरक पीसकर बनता है सौंठ पाउडर। इसका मतलब है कि हमारी आज की रेसिपी थोड़ी मसालेदार भी होगी, है कि नहीं? इस बात पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप चावल को अच्छे से धो लीजिए। अब हमें इन चावलों को सुखाना है, इसके लिए कॉटन के एक कपड़े पर इसे फैलाकर रखिए। लगभग 2-4 घंटे के बाद इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर इसे मिक्सर में डालकर इसका रवा बनाइए। उसके बाद मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में हमें गरम करना है घी। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी घी को गरम कर रही हूँ। फिर उस गरम घी में हम डालेंगे मिक्सर में बनाया हुआ आंबा मोहर चावल का रवा। लगभग 10 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। तब गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिए। ऐसा करने से ये रवा गोल्डन कलर का होगा, नहीं तो वो जल सकता है और किचन में धुआंधार परफॉर्मेंस वाला सीन क्रिएट हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। लगभग 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और ताजा आमरस। फिर ऐड कीजिए ढेर सारा प्यार। इसे आप अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। फिर बारी आती है शक्कर, केसर और थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर। इसे भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 2-4 मिनट में ये पक जाएगा। फिर इसमें डालिए थोड़ा सा और घी और साथ ही खुशबूदार इलायची पाउडर। इस देसी घी और इलायची पाउडर की खुशबू से आपका घर महक उठेगा, क्या बात। अब इस कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लगभग 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। जब तक ये पक रहा है हम एक ब्रेक लेते हैं। हमारी आंब्याची अमृत फळे अब फाइनल टच के लिए है तैयार और इसे खाने के लिए हम कैसे करें और इंतजार। तो भाई अब आगे सुनिए। सूजी का हलवा मींस शीरे जैसे ये कढ़ाई वाला मिश्रण दिखने लगे तब आप गैस को कर दीजिए बंद। अब एक बड़ी सी प्लेट में इस मिश्रण को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले उस प्लेट पर थोड़ा सा घी सब तरफ अच्छे से फैलाइए। फिर कढ़ाई में तैयार मिश्रण को उस घी वाली प्लेट में निकालिए। इस गर्मा गर्म मिश्रण को एक कटोरी के बेस की मदद से अच्छे से चपटा करके फैला देना है। जब तक ये मिश्रण गर्म है तब ही इस पर खसखस और ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को फैला दीजिए। बाद में कटोरी के बेस से इसे भी प्रेस कर दीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद इस तैयार मिश्रण को छुरी की मदद से स्क्वायर शेप में काटिए। इस प्रकार आंब्याची अमृत फळे अब खाने के लिए है एकदम तैयार। एक सुंदर सी कटोरी में रखकर इस आंब्याची अमृत फळे का भोग आप भगवान को लगाइए। ऐसा करने से खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। अब इसका एक टुकड़ा उठाकर बड़े आनंद से इसका लुत्फ़ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस आंब्याची अमृत फळ की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है प्रस्तुत हुआ अमृत। न्यारी सी एक मिठाई, नाम में जिसके अमृत, आमरस और चावल से इसे बखूबी किया प्रस्तुत। आम से बने व्यंजनों की इस शो में भरमार, स्वाद का जायका निभाने आई भारतीय सीमा बनकर कर्णधार। हम खाना खिलाते खिलाते सुनाएंगे कुछ गाने, कभी नए तो कभी भूले हुए फसाने। हमेशा बनी रहे ऑडियंस जी आपसे हमारी दोस्ती, आसानी से भूल जाओ ऐसी नहीं ये हस्ती। भारतीय खाने में छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज। अब बारी है अगली रेसिपी की, लेकिन पहले बजेंगे कुछ साज।

सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे गर्मी के सीजन में एक और फल मार्केट में आता है। इस फल के बीज निकालकर उसे नमक लगाकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। ऐसा सुखाने से लाल रंग वाला ये खट्टा फल काले रंग का बन जाता है। इसे मेनली महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इस सूखे हुए फल में नारियल का दूध मिलाकर बनाई जाती है कोकम कड़ी, मींस सोल कड़ी। ये ताजगी भरा व्यंजन है। ये अपने खट्टे मीठे और पाचक गुणों के लिए फेमस है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होने के साथ हल्का मसालेदार भी होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या जामुनी होता है, जो कोकम से नेचुरली आता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हमारे शरीर में ठंडक छा जाती है और हीट स्ट्रोक से बचाने में ये बहुत ही प्रभावी मींस असरदार है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को फायदा ही मिलता है। मींस अपनी ब्यूटी रेजिम में आप कोकम कड़ी को जरूर शामिल कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कोकम कड़ी को सिंपल चावल के साथ खाना मतलब कंफर्ट फूड खाने वाली बात। इस टेस्टी और हेल्दी कोकम कड़ी या सोल कड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सूखा कोकम 8 से 10 टुकड़े, कोकम भिगोने के लिए गर्म पानी आधा कटोरी, फिर हमें चाहिए कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 1 कटोरी, हरी मिर्च 1 या 2, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 3 लीजिए, लहसुन की कलियां 3-4, ये ऑप्शनल है, जीरा 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब तड़का लगाने की सामग्री को जानते हैं। हमें चाहिए तेल या देसी घी लगभग 1 चम्मच, राई मतलब सरसों 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ते, गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कोकम कड़ी मींस सोल कड़ी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले सूखे कोकम को 1/2 कटोरी गर्म पानी में भिगोकर रखिए। लगभग 1/2 घंटे बाद कोकम का टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा। तब उसी पानी में कोकम को अपने हाथों से मसल दीजिए, मींस क्रश कीजिए। ऐसा करते समय उसके बीज आप हटा दीजिए। अब हम नारियल का दूध बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। मिक्सर के जार में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए, उसमें हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और लहसुन ऐड कीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लीजिए। अब इस पीसे हुए मिश्रण को महीन छलनी में डालें, छोटे छेद वाली छलनी से सॉलिड और लिक्विड पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। सॉलिड वाले पेस्ट को अपने हाथों से निचोड़कर हमें नारियल का गाढ़ा सा दूध मिलेगा और वो लिक्विड वाला भी चाहिए। भाई टेस्टी सोल कड़ी को एंजॉय करने थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब इस नारियल के दूध में मसल कर बनाया हुआ कोकम और उसका पानी दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें मिलाइए थोड़ा सा नमक। अब इस गुलाबी मिश्रण को हम खुशबूदार तड़का लगाकर स्वाद का जायका निभाने वाले हैं। इसके लिए एक छोटे से पैन में थोड़ा तेल या घी गरम कीजिए। उसमें सबसे पहले डालिए सरसों मींस राई, मस्टर्ड सीड्स। फिर उसमें ऐड कीजिए कड़ी पत्ता। वाह वाह वाह, क्या बात! इस खुशबूदार तड़के को कड़ी में डाल दीजिए। 1 चम्मच की मदद से इसे मिक्स कीजिए। इस तरह सोल को खुश करने वाली खट्टी मीठी और जरा सी मसालेदार कोकम कड़ी हो गई है तैयार और इसे डेकोरेट करने हम हैं बिल्कुल ही तैयार।
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सोल कड़ी को डेकोरेट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप यहीं पर बने रहें, मैं यू गई और यू आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस गुलाबी कोकम कड़ी को सुंदर से एक कांच के ग्लास में परोसिए। फिर इसकी सुर्खी को सजाने के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। दैट्स इट। अब सोल कड़ी को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सोल कड़ी का गुलाबी रंग निखारने के लिए मींस इसे डार्क पिंक बनाने के लिए आप इसमें बीट रूट का थोड़ा सा जूस मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका गुलाबी निखार और बढ़ेगा, साथ ही इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को एंजॉय करने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब कीजिए। इस सोल कड़ी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सोल को खुश करने वाली सोल कड़ी। गुलाबी रंग वाली सुंदर सी कड़ी दिखने में लगती है नजाकत से भरी। इसके टेस्ट से खुश होगा हर किसी का सोल और इसके स्वाद का ना कोई दूजा मोल। कोकम कड़ी है महाराष्ट्रीयन भोजन की शान। इसे टेस्ट करके आप जरूर करेंगे इसका गुणगान। नारियल का दूध और कोकम का कॉम्बिनेशन मतलब स्वाद का जायका निभाने वाला खट्टा मीठा क्रिएशन। आऊंगी आपसे मिलने हर सोमवार और शुक्रवार। शेयर करने कुछ रेसिपीज मेरा दिल होता है बेकरार। अपने देश की खाद्य संस्कृति को जानने की हमारी ये छोटी सी कोशिश। हुकुम कीजिए ऑडियंस जी, हम पूरी करेंगे आपकी विश। देसी खाना खाकर पर्व। भारत की तरक्की का अब शुरू हुआ है पर्व। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, हमसे साझा कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अब हम सुनते हैं एक झटपट रीकैप। आज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बनाई आंब्याची अमृत फळे। अल्फोंसो मैंगो पल्प को खुशबूदार अंबा मोहर चावल के साथ पकाकर हमने मैंगो सीजन को सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमने बनाई सोल को खुश करने वाली टेस्टी सोल कड़ी। नारियल का दूध और खट्टा मीठा कोकम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे टेस्ट बर्ड्स को दे रहा है फैसिनेशन, है कि नहीं? भारत के अलग अलग हिस्सों की खाद्य संस्कृति को हम स्वाद का जायका इस शो पर शामिल करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वैसे रेडीमेड खाना ऑर्डर करना ये ऑप्शन तो हर कोई चूज कर सकता है, राइट? लेकिन अपने देश की जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमें लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए और बनाकर औरों के साथ एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनापन जताने की कोशिश करते हैं। हमारे मन की भावनाएं मतलब ढेर सारा प्यार हम हर रेसिपी में जरूर ऐड करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सिंपल सी लगने वाली आसान रेसिपी भी कंफर्ट फूड बन जाती है। जब शबरी जी ने भगवान श्री राम के लिए बेर चुने तब उन्होंने पहले उनको टेस्ट किया, क्योंकि शबरी जी चाहती थी कि भगवान श्री राम को सिर्फ मीठे वाले बेर ही खाने चाहिए और भगवान श्री राम जी ने उनकी भावनाओं का आदर किया। शबरी जी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने बिना हिचकिचाहट बड़े आनंद से ग्रहण किए, क्योंकि शबरी जी के मन की भावनाओं का भगवान श्री राम ने आदर किया। ठीक उसी तरह हमें भी खाना बनाते समय अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारे मन की भावनाएं हम बना रहे खाने में उतरकर उस खाने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन खाने की टेस्ट को बिगाड़ देता है। किचन में पकाए जाने वाले भोजन पर अच्छे संस्कार करने के लिए आपकी सोच मायने रखती है। भाई खाने और खिलाने का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा ही नहीं एकदम पक्का वादा। आज भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।

0: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। मैम हैज डन हर फैकल्टी एट शी इज इन फैकल्टी ऑफ माया सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी। शी इज अ एमिनेंट क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल वोकलिस्ट। शी हैज अचीव्ड गोल्ड मेडल इन MA इन वोकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड शी इज डिसिपल ऑफ विदुषी अपूर्वा गोखले जी एंड पंडित किरण फाटक एंड विदुषी धनश्री पंडित राय। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अवार्ड, लता मंगेशकर अलंकारण अवार्ड विनर एंड अवार्डेड अ गोल्ड मेडल इन मेमोरी ऑफ श्री आर सी जाल। परफॉर्म्ड इन इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम गाथा इन 2023, परफॉर्म्ड इन इंडो हंगेरियन प्रोग्राम इन 2024 एंड परफॉर्म्ड इन श्रीलंकन प्रोग्राम इन 2025। शी हैज पब्लिश 2 पेपर्स इन इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स इन 2023 एंड 24। शी हैज बीन द जज एट ZTV लिटिल चैम्प्स एंड अवार्डेड अ गोल्ड मेडल बाय देवी अहिला यूनिवर्सिटी इन मेमोरी ऑफ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म शताब्दी महोत्सव। She is an active classical music based YouTuber with 100 and plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhatiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खांडवा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को। और ट्रांसफरेबल जॉब में थे लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, उनका इतना कमांड था। तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से। भोपाल में काफी सालों तक वो MLB कॉलेज में जुड़ी रहे। और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होके मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा। लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल बाद में मैं कहूंगी कि ये तो एक जीवन ही कम है संगीत के लिए। आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है। और चूंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक
0: है,
1: मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लायक है। सो मुझे लगाव भी था बहुत।
0: अच्छा।
1: मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे।
0: हाँ।
1: उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाके दिए थे और सुनती रही मैं। सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो क्योंकि उसमें जो भाव है
0: हाँ।
1: वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गुरु जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की वो धनश्री जी से ली है।
0: जी जी। और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो बहुत बड़ी विदुषी है। सुनीता जी अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज्यादा सीखती है?
1: जी, क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी, और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, सो हम सुनते हैं इनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुड्डू जी का शुरू से ही पसंद, बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात होगी और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। सो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: जी बिल्कुल, और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहां पे उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: यही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का, खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक कॉलेज ओपन हुआ है। सो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था, जहाँ पर कि बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। सो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं जरूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
0: जरूरी, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी जी उसको ज्यादा मायने रखती
1: जी।
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से,
0: देवास। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम श्रोते, आप सुनते रहिए आचार्य 98.5 ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसाइपल ऑफ अपूर्वा बुकले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gandharade, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत में, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एकांत चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत जरूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप 2-4 घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से दिखते हैं इस सब चीज को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत जरूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, और मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, सो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो 3 तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें. और तीसरा मनन चिंतन करने से. ये अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, ताने कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज है.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट जब मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, सो मैंने म्यूजिक में ही एमए किया. तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा. मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे करियर इसी में करना है. सो म्यूजिक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है. क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. सो मेरी गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ. क्योंकि वो भी अभी तक, मेरी गुरु अपूर्वा गोखले जी अभी तक यशवंत महाले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रहे हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कशालकर जी से सीख रहे हैं. सो उन्हीं से, मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया बहुत कुछ. क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वही हमारी प्रोग्रेस रुकती है. सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में सोमय स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सोमय के स्टूडेंट्स, ऐसा पार्ट टाइम था ये सोमय स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 इयर्स चला और 75 प्लस स्टूडेंट्स थे वहाँ और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा. उसके बाद समीर सोमैया जी जो हमारी ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे. सो 2021 से माया सोमय स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BPA, MPA, PhD, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब की डिग्री दी जा रही.
0: तो मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली, मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनके प्रति जैसे हम देखते हैं पूना में है, कई कई बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज्यादा उनका लगाव रहता है. लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताइए.
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, सो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया. बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सारी सा गम धा नी धा सा. अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा अधिकाना, तो ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. लेकिन राग हमें आज पता चला, दिस इज बेस्ड ऑन राग हमीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे. और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज. तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे. मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है.
0: बिल्कुल. अभी आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ती होंगी, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो जी. तो आप बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: नहीं, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है, भाव पक्ष है. जना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस के तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का, हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के,
0: अच्छा,
1: 2 प्रैक्टिकल के. सो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है. तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी. बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब, फिर क्रमिक पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं, और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके.
0: और ऑटोबायोग्राफीज भी, कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है.
1: हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े. लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं. आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है भाई हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या पंडित जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी से जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है. लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है. लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है
0: जी.
1: सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कहीं ना कहीं आपके जेहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया और उस जमाने में जब ज्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है
0: जी। और आजकल भी ये जमाने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, महेश काले जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरह बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना ही चाहिए। तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं। सो यूथ बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सुमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो तो होना ही चाहिए। आप कुछ भी गाएं वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते
0: हैं। लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने
1: बराबर। तो मेरा यही इंटेंशन है तेजस्विनी जी कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना
0: जी।
1: मैंने इसीलिए 17 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
0: होते थे,
1: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखाती थी स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है, कोई भी चीज हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। सो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, सो प्लीज आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहे अच्छे, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ रैप बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके भी बात की है।
0: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर जुड़ते हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता गंगरडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, यू आर लिसनिंग टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें। मैम अभी पढ़ते हैं आपके PhD की ओर। PhD में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको SIES कॉलेज एंड षणमुखानंद ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर।
0: अच्छा।
1: सो हमारे यहाँ सुमेया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी। सो हमारे यहाँ तक उस समय में सुंदरराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए।
0: अच्छा।
1: इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है।
0: हाँ।
1: सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी की वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला।
0: हाँ।
1: और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया,
0: हाँ,
1: तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मजा है?
0: हाँ।
1: हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं,
0: हाँ,
1: तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया।
0: अच्छा।
1: और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे।
0: ओके।
1: तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया।
0: हाँ।
1: और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया।
0: हाँ।
1: कि ये बहुत अच्छा है, और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला।
0: हाँ।
1: बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते,
0: हाँ,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे ये म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं।
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में।

0: ज्यादा करके म्यूजिक डाला जाता
1: हाँ,
0: है
1: करेक्ट,
0: ताकि वो सुन सके
1: करेक्ट,
0: और
1: करेक्ट,
0: उसमें वो ज्यादा रिकवर भी ज्यादा हाँ, फास्ट होते हैं
1: हाँ,
0: तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा इट वर्क्स इन डे टू डे लाइफ। वो भी सुनते, अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हम हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है। तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशंस है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे।
1: जरूर जरूर। म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर। तो मुझे शशांक कट्टी जी जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं उनका मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू ही
0: अच्छा
1: मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं और उन रागों का क्या प्रभाव है। सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा। सो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसको मराठी गाने, भावगीत, नाट्य गीत और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ और जब मैं उनको गा कर बताती हूँ और वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं तो ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। सो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम
0: जी।
1: या
0: तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे तो इसका रिलेटेबल थोड़ा मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक।
1: या जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है। सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ। जैसे यमन राग की अगर हम बात करें

0: टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है, तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है पीएचडी। सो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनके तरह गाऊं, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है। मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीजें खुद से नहीं निकलेगी, क्योंकि राग है ना, जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें। बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं या रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए।
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसी ऑडियंस है, एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए। कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था कि मैं एक चीज गाती हूँ और दर्शकों की नजरों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना, तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाती हैं, फिर कुछ थोड़ा सा घप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती है, या जैसे वो गाती है हमें तुमसे प्यार की तरह, तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा, राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस
0: कैसी है,
1: प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है, और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कि आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM, और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग।
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, okay. में, जो मुझे बहुत पसंद है।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक

की भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे, आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मींस उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए।
15 मिनट के बाद हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल्स से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यमी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूं आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहां पर मैं बात कर रही हूं करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा।

लगता है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई, उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा। ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पे ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांट कर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन कशला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो।
स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कुल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम, दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट, दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। RJ भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मेरा, देव, सना और हाँ यश भी। सबने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई, और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुरा हूं, गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलू वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है, बापुराव ने जवाब दिया। जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे? उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की,
और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने

बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन एक घंटा बीत गया, फिर डेढ़ घंटा, फिर दो घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने जीपीएस चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ, कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहां हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी, क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे, विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया, टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था। बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के चलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई, उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने, कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया। बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था, उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया, उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था।
यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी, पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे। लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन 7 लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक।

स्वागत है आपका आचार्य 90 एफएम में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उसकी आवाज भर गई। मैं गाइड था, मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी, हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी, उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है, जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था, पेज पर खून जैसा लगा था, और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी, सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक, केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हक किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए, शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल

चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं। उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करता है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये 7 लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और 7ों के 7ों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।

कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।